उपदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुरु बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छिड़ाए तू गुरु पिता तू है गुरु माता तू गुरु बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया केरी।

प्रीत राम राय की गुरमार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखण को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हिरदे गुरमतरा मरसायण जेवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आघाने फिर बोर न पूख लगावे। कोई करे उपाप

हर आपे कान उपायदा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, हर आपे सब कड़ भोगदा मेरे गोविंदा, आपे रसिया भोगी जियो, हर सो जानना भुली मेरे गोविंदा, आपे सतगुर जोगी जियो, आपे जगत उपायदा मेरे।

जियो, गुर सबदी पाई गए हर प्रीत मराओ जियो, वडभागी जपनाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रव्यासा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रापासा जियो, गुरमत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरेड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माज मगला चौथा, मेरा बिरगी ना मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत कर लीवा जियो, मान हर अंगरतड़ा हर सदा पीवा जियो, हर पायड़ा मन जीवा जियो, मेरे मन तन प्रेम लगा कर बाण जियो, मेरा प्रीत मित्र कर पुरख सुजान जियो, गुरमेले संत हर सुड़ सुजान जियो, हौ ना मिटो कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत साई जियो, हर दसो संतो जी।

करण करामन गार सुवामी सगल कटाके अंतर जामी सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन मैं ले हो जाको राम नाम लिवलागी कहो नानक तो तन वडभागी गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा सुन हर कथा उतारी मैल मां पुनीर पय सुख सैल वडे पाग पाया सा संग पार ब्रह्म सिउन लागो रंग हर हर नाम जपत जन तारियो अग्न सागर गुर पारे उतारियो रघाओ हर कीर्तन मन शीतल पय जन्म जन्म के किल भग गए सरबन दान पेखे मन माहे अब ढूंढन काहे को जाहे प्रभ अपने जा पय दयाल पूर्ण होई सेवक काल बंधन काट की अपने दास सेमर सेमर सेमर गुणतास एको मन एको सब डाय पूर्ण पूरे उस सब जाय गुर पूरे सब परम चुकाया हर सिमरत नान सुख पाया गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा अगले मुझसे पाछे परे जो उबरे से बंद लग खरे ये तंदे मैं ओ लपटाए उन ते दुगुन दड़ी उनमाए ओ बेला का चीत न आवे बिन सजाए ताहू लपटावे ए रखाओ आशा बंदी मूर्ख देह काम क्रोध लपटे स्नेह सिर ऊपर ठांडो तरमराए मीठी कर कर बिखिया खाए औ बंदो औ साधो बैर हमरी पोम कौन खाले पैर हौ पंडित हौ चर सियाणा करने हारना बुझे बिगाना अपनी गत में ते आपे जाने क्या को कहे क्या आख बकाने जित जित लाभ है तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सबके तेरा तू करने हार अंत नहीं इस पारावार दस अपने को दीजे दान कहू न विसरे नानक नाम गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा आनक जदन नहीं हो छुटारा बहुत सियाण आगल पारा हर की सेवा निर्मल गेत प्रभु की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहु हर नाम का ओला तुझे न लागे ता चोला अरगाओ ज्यो बोझ पैसा गरमाहे अंधकार दीपक दीपाहे अग्न सीत का लास दुख नाम जपत महोवत सुख।

चख सार जागत होए रहे बिस्मार अमर तरना पियो प्यारी हे रसराती हुए तृप्तारी हरहाओ हे देवे तू राम गुण गाओ निमख निमख हार हर हर त्याओ आन सुनिए कत हूं जाइये सा संत बड़ भागी पाईये आड़ पर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर आगाध ईगा उवा सदा सुहेली हर गुण गावत रसन अमोली अनंत मोली फल फुल पेडे इरस राती बोर न छोडे आन न रसकस लवे न लाई कौ नानक पुर पय है सहाई गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा मन मंदिर तन सजी बार एसी मध्य बस्ते पार एसी पीतर सुनी साहो तन वपारी जाका उआ विसाहो नाम रतन को ब्योहारी अमृत

तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सा गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पुनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। ओ नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हरदिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस्त को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्टवास होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सर्बनधान, साध पूजनी सदगुर संग।

मिटे कलेस सुखी हो रही है। ऐसा दाता सतगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, रखाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सरबन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाण।

छुड़न तिसु मन रचना, कहो गुसाई मिलिए केहे, जो बिवर्जित तिसु नेहे रहाओ। तूड़ बात सा सच कर जाती, सत हो मन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ अपूठा बुनना, दोआं सिरां का खसम।

जामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरे जन कोट रखाओ जेते जीते ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सूह कनेरे जुगज वरते सब तेरा पाणा हुगम बूझे सो सच समाणा हर कृपा दीजे प्रदान नानक सिमरे नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दिस पाई गे वडभागी जाकी राम नाम लिव लागी जाके हर वसिया मनमाही ताको दुख सुपने पी नाही हर हाओ सरबन धन राखे जनमागे ताके संग केल विख दुख जाहे जनकी महिमा कसी न जाए पार ब्रह्म जन रहया सुमाए हर कृपा प्रभ बिनो सुनीजे दास की तूर नानक को दीजे गौड़ी महला पनवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसे मने आए।

पूर्ण पद पाया, साध संग पै परम मिटाया, जड़ का देखो तद रहा समाए, नानक दास हर की शरणाए, कौड़ी मोहल्ला पंजवां, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ, बार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव, हर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन तन गुर प्राण अधारी, सबल जन होवे परवान, गुर पार वंड कर जान, संतूर पाए गए वड़ भागी, नानक गुर पेड़ हर त्यों लिव लागी।

शरण परे प्रभ अंतर जामी, नान कोट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा। हर संगराते पाए ना जले, हर संगराते माया नहीं चले, हर संगराते नहीं डूबे जला, हर संगराते सुभल फला, सब मिटे तुम्हारे नाय, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संगराते मिटे सब चिंता, हर स्यों सो रचे।

साई मीतला तू संग हमारे बाह जियो रहाओ, खुद बिन करी ना जीवना रग रहना संसार, जी प्राण सुख दातया निमक निमक बलिहार जी, हस आलम्बन देव प्रभ घर तो उदर गोपाल, मोय निर्गुण मत थोरिया तू सदगी दीन दयाल, क्या सुख तेरे समला कवन विधि विचार, शरण समाई दास हित ऊचे अगम अपार, सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महार समाहे, तो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे, माल पिता सुध बंध को तू मेरे प्राण आधार, सा संग नानक भजे हितरिया संसार, गौड़ी बैरागन रहोए के शंत के कर महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे, सर्व कल्याण सुख सुध पावे, हरहाओ बन मन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी, जिन घर पाया से वडभागी, ब्रह्मादक सनकादक चाहे, जोगी जति सिद्ध अर आहे, जिसे प्राप्त तो हर गुण गाहे, ताकि सरंजन बिसर तनाही, वडभागी घर संत मिलाही, जन्म

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है, या ते थिर न रहाई। रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई। रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछ न बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला, तौ सबिद बन आई। गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो। मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ। पतत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ। गय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसराव। ताज अभमान मोह माया फोन, भजन राम चित ला को माई। उल्लेओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर। निमखन हर गुण गावे रहाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की। बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान। तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो। जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण।

निस्त निर्मल नाम विचार, पूर्ण पूर रहया बिखमार, त्रिगुटी छूटी बिम मजहार, गुर की मत जिये आई कार, इन बिग राम रमत मन मानिया, ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया, रखाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया, लाल पै सूहा रंग माया, नदर पई बिग ठाक रखाया, उल्ट पई जीवित मर जागया, सद रवे मन हर स्यों लागया, हरा संग्रह बिग पर हर त्यागया, पाए बसे जमका पो पागया।

कैसा डर कमन, शब्द पिछाने तीन ने पावन, जिन कहया तिन कहे नुखाने, जिन बूझिया तिन सहज पिछाने, देख विचार मेरा मन माने, कीर्त सूरत मुक्त इकनाई, तही निरंजन रहा सुमाई, निकर व्याप रहा निचाई।

सेवा सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तरम साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नहीं निरठाओ, प्रेम प्रायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्व जंजाला, मनमुख चील कुष्ट बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सास सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुर्मत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तारण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाई।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा। जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा। गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई। कर कृपा रख हो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले। गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा। संत हेद पर्व तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत् विचारे। साज हृदय प्रेम निवास, परम नानक हम ताके दास। गौड़ी महला पहला, ब्रह्मे गर्भ किया नहीं जानिया। वेद की विवत पड़ी पछतानिया, जय प्रसमरे तई मन मानिया। ऐसा गर्भ बुरा संसार, जिस गुर मिले जिस गर्भ निवार रहाओ। बल राजा माया अहंकारी, जगन करे वो पारे वारी। बिन गुर पूछे जाए पयारी, हरि चंद दान करे जस लेव। बिन गुर अंत न पाए अपेव, आप भुलाए आपे मत देव। दुर्मत हरनाश दुराचारी, प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी। प्रहलाद उधारे कृपा थारी, फूलो रावण मुग्ध अचेत। लूटी लंका सीत समेत, गर्भ गया बिन सदगुरु हेत। सहस बहु मद कीट में खसा, हरनाश ले नहो बेदासा। दय सिंघारे बिन भगत अभ्यासा, जरा संद काल जमना सिंघारे। रक्त बीज काल नेम बिदारे, दय सिंघार संत निस्तारे। आपे सदगुर शब्द बिचारे, दूजे पाए दैत संघारे। गुरमुख साह भगत निस्तारे, बूढ़ा दुर्योधन पद खोई। राम न जानिया करता सोई, जान को दुख पचे दुख होई। जिन मेजे गुर शब्द न जानिया, क्यों सुख पावे परम भुलानिया। एक तिल पूले बौर पछतानिया, कांस केस चांडूर ना कोई। राम न चीनिया अपनी पद खोई, बिन जगदीश न राखे कोई। बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए, गुरमत धर्म तीर्ज हर नाए। नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला। चोवा चंदन अंक चढ़ाओ, पाठ पटंबर पैर हंडाओ। बिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पैरो क्या ओट दिखावो। बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला। लाल निगाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सो पाला। नैन सुनोनी सुंदर नारी, खोर सीगार करे अद प्यारी। बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दार कर महिला से सुखाली। तैन से फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो दे सुखाली। ऐबर गैबर नेजे वाजे, लश्कर नेब खुवासी पाजे। बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ। ताज कुल है सिर छत्र बनाओ, बिन जगदीश कहाँ सद पावो। खान मलूक हावो राजा, अबे तबे कूड़े गए पाजा। बिन गुर शब्द न सबर सकाजा, होमे ममता गुर शब्द विसारी। गुरमत जान्या हृदय मोरारी, परमत नानक शरण तुम्हारी। गौड़ी महला पहला, सेवा एक न जानस अवरे। पर पंच ब्याद त्यागे कवरे, पाए मिले सच साचे सच रे। ऐसा राम पत जन होई, हर गुण गाय मिले मल थोई। रहाओ उन्दो कबल सगल संसार, दुर्मत अगन जगत पर जारे। सो उबरे गुर शब्द विचारे, प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना। मिर्ग मरे से अपना कीना, तिसना राज तत् नहीं बीना। काम चिते कामन हितकारी, क्रोध बिना से सगल विकारी। पत मत खोवे नाम सारी, पर कर चीत मनमुख डोलाए। गल जेवड़ी तंदे लपटाए, गुरमुख छूट सुहा।

वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भोर नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल भाए उलासा नानक हरस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे ना लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

प्रापाया सच मुक्त द्वारा निर्कर्मयल अपार को अपरंपर सोई। बिन शब्द थिर को नहीं बूझे सुख होई। क्या ले आया ले जाए क्या फसे जमजाला डोल बदा का जेवरी। आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर सहजे पद पाई है। अंतर शब्द निधान है मिले आप गवाई है। नजर करे प्रवे अपनी गुण अंक समाव नानक मेल ना चूकई। लहा सद पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो होए नबेरा। घर का नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा। बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा। जेला कर्म कमाव ही बिन गुर अंधेरा रहाओ। अंधे अकली बारे क्या तिरसो कही है। बिन गुर पंथ ना सूझई केत विद निर्भई है। खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने। अंधे का ना हो पारखू कली काल विडाने। सूते को जागत कहे जागत को सूता। जीवत को मुआ कहे मुए नी रोता। आपत को जाता कहे जाते को आया।

देख देख जीवा, गुर के चरण तोय तोय पीवा, गुर की रेण नित मज्जन करो, जन्म जन्म की होमे मलहरो। इस गुर को चूला भू पाखा, मां अग्न ते हाथ दे राखा, तिस गुर कै ग्रह टोभो पाणी, जिस गुर ते अकल कद जानी।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, रहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, कोड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

माई, फिर बिन नींद न आवे जियो। कापड़ तन न सुहाई, कापर तन सुहावे जां फिर पावे। गुरमती चित लाईए, सदा सुहागण जां सतगुर सेवे। गुर के अंक समाईए, गुर शब्द मेला तां फिर रावी। लहा नाम संसारे, नानक कामण ना प्यारी। जां हर के गुण सारे, साथन रंग माणे जियो। अपने नाल प्यारे, आए निसरंग राती जियो। गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हो मे मारे। इन बद मिरो प्यारे, साथन सुहागण सदा रंग राती। साचे नाम प्यारे, अपने गुर मिल रही है अमृत गई है। दुबदा मार निवारे, नानक कामण हर वर पाया। सगले दुख विसारे, कामण पिरो फुली जियो। माया मोहे प्यारे, झूठी झूठ लगी जियो। कूड़ मुठी कूड़ियारे, कूड़ निवारे गुरमत सारे। जूए जन्म नहारे, गुर शब्द।

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पद ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे कुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभ आप

कुसुम रंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेबद कदू ना छूटी है साकत त्यू कुमार।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मनहारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चले सब कोए ताको मात पिता सो धिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बासे ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कटरहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई। श्लोक नानक नाम नाम जब जपया, अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया। नरक नाए सा संग पौड़ी, नन्ना नरक परे ते नाही। जाते मन तन नाम सही, नाम निधान गुरमुख जो जपते। बिख माया मैं ना ओए खपते, नन्ना कार न होता ताको। नाम अंतर गुर दीनो जाको, निद निधान हर अमृत पूरे। ते बाजे नानक अनघ तूरे, स्वरूप पतरा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रभ निर्वानी भावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप शाड एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रब रहया शांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हो छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होत कृपाला ओरे

दिन रात हर हर औखद साध कुमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन के बिरत विवेक हर का नाम जन को मुक्त जोत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परय न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड भागी पाईये, संत की सेवा नाम ते आईये, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को होए। श्लोक बहु सतर बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर तिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अगर माय होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अध साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तौ पी होमे मैल न जावे, हर के नाम संसर कशनाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे, गर्भ गुमान न मन ते हुट्टे, तोज करे दिनस अर रात, मन की मैल न तन ते जात, ए देही को बो साधना करे, मन ते कभू न बिखिया टरे, जल धोवे बहु दे अनीत, तुद कहां होए काची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पातत बहु मूच, बहुत सियाणप जमका पौ व्याप, अनक जदन कर तृष्ण ना त्रप, पेख अनेक अगर नहीं बुझे।

भगवान तरण करावन हार सुवामी सगल कठा के अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर न जान सकोए सर्व धर्म सहित धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम में उद्यम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कड़ वसे हर नाम सलोक निर्गुनियार ए आनेया तो प्रभु सदा सुमाल जिनकिया ते चीत रख नानक निभगी नाल अष्टपदी परमैया के गुण चेद परानी तवन मूल ते कम दृष्टानी जिन तू सासवार सीगारेया सर्व अग्न में जिने उबारेया पार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद दिर्द पया ऊपर साग सैन मुख प्याओ बैठ तो दैन इहो निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्स लियो तो नानक सीजे ये प्रसाद हर ऊपर सुख बस तुद प्रात मीत बनता संग हस ये प्रसाद पी वैसी तल जला सुखदाई पवन पाप अमुला ये प्रसाद भोगे सबरसा सगल समग्री संग साध बसा तीन हस्त पाप करण नित रसना इसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दुख मूड अंध व्यापे

ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी तुमते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी सलोक तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए नानक कहू न सीजई पिन नावे पद जाए अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्त कारण बिखोड़ गो।

सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्म ज्ञानी कै नहीं अवमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊज ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी

ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समंदर सी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परे उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नागी तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हो सो पला, ब्रह्म ज्ञानी सोबल भला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह एक कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसे प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत, ब्रह्म ज्ञानी अंगबोध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कह घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता, ब्रह्म ज्ञानी कह होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का तथ्या न जाए अधाखेर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सबसठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी ता जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक, उर तारे जो अंतर नाम सर्वमय पेखे भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक को अपरस सगल निस्तार है अष्टपदी, मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप ना पेखे नेत्र साध की टहल संत संग हेत, करना सुने काहू की निंदा तब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद दिखिया पर हरे।

जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए पिन, कर्म करत होवे ने कर्म, तिस बैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बचे, केवल भगत कीर्तन संग रचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, तब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको बैसनो परम गल पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागे दुष्ट का संग, मन ते बिरसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सा संग पापा मन खोवे, इस भगवती की मत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत, मन तन अर्पे विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत कौ पावे, तो पंडित जो मन प्रबोध, राम नाम आत्म मैं शुद्ध, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित कह उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, तो पंडित फिर जो न आवे, वेद पुराण तिमृत बूझे मूल, सूख मैं जाने अस्तूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे जिसकी गद होए, सा संग पावे जन कोय, कर कृपा अंतर और तार, पास प्रेत मुग्ध पाथर कौतार, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जूत कते न पाई गे धर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, जिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तुझ नदरी आया, दाद संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निट हर जान, हो दास दर गए प्रवान, अपने दास को आप कृपा करे, ते दास को सब सोजी पर, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सौ कहावे, तैसा हरक तैसा ओ सोग, सदा अनंत नहीं बेयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वर्ता ऐसा ही जुत, नानको पुरख कहिए जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभ पावे सोई पुन हो, पसर आप हो अंत तरंग, लखे न जागे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल, श्लोक उस्तुत करे अनेक जान, अंत न पारावार, नानक रचना प्रवृति, बौद्ध अनक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पे तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार, कई कोट सबका विचार, कई कोट नर्तन नाम त्याव, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पय अवमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्व को हिरे, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे, जित जित लाभो ते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पानी बह, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दान इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार, कई कोट राजस तामस साधक, कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र, कई कोट की रत्न समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की ये त्रिजीव, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण तीव, कई कोट जख किन्नर प्रसाद, कई कोट भूत प्रेत तुकर मिर्गात, सब ते नेरे तहु ते दूर, नानक आप
ਲਿਪਟ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋ ਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਤਖੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕਾਲੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚਿੰਤ, ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤੈ ਤੈ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਬਜ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਪੈ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਲ ਨਿਵਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਖਨ ਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪਿਆਸ, ਦਿਨ ਕੋ ਮਿਲੇ ਓ ਪ੍ਰਭ ਅਵਿਨਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੇ ਸਤਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ।

प्रवते हुए प्रम है सुमात ताका अंत न जाने कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तिन होते या तुम परगास कई कोड़ तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तु भावे सोई होग खिन में था था पनहार अंत नहीं किस पारा वार हुक्मे तार अतार रहावे हुक्मे उपजे हुक्म सुमावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वड्याई नानक सब में रहा सुमाई प्रभ भावे मानुख गद पावे प्रभ भावे ता पात्र त्रावे प्रभ भावे बिन सास्ते रख प्रभ भावे ता हर गुण पख प्रभ भावे ता पत उधार आप करे अपन विचार दुआ सिरिया का आप सुवामी खेले बिगसे अंतर जामी जो भावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मान गुते क्या होए आवे जो तु भावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किछ ले जो तु भावे सोई करे अनजानत दिखिया में रटे जे जानत अपने आप बचे परमे पूला दर्द तावे निव कमाए चार कुंट फिरे आवे कर कृपा जे अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले खिन में नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दिश कशु न आवे तिस तत्काल दैज प्रटावे जाको अपनी करे बगसीस ताका लेखा ना गने जगदीश जियो पिण सत की रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत आप बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बाल नाई इस हाथ करण करावन सर्व

विचार कबू ऊब का सपयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे यूं प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ती स्नान कबू सिर साधक हो ज्ञान कबू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

तेन पुरख का उत्तम करमान योग करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुपय होवे सो होए करने गार पछाने सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा त्रिटाना जेते उजे तुमाए सुमाए ओए सुख निदान उनहू बने आए आस को अवधि नो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तिस बलिहार अष्टपदी टूटी गंडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन मागे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा।

अनद रूप मंगल सुजाक सर्व शोक सुनहे करताक राजमय राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्त मैं भोगी त्याय त्याय भगते सुख पाया नानक पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे

दया प्रवतार नानक सो सेवक सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रख अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप पत रख ताकि गत मित कोई ना लख प्रभ के सेवक को ना पहुंचे प्रभ के सेवक ऊचते ऊचे जो प्रभ अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैत से प्रगटाया निकी कीरी में कल रख पसम करे लस्कर कोट लख जिसका साधन काटते आप ताको राखत दे कर हाथ मानस जतन कर्तव पात जिसके कर्तव्य बिरथे जात मारे ना रखे अवर न कोय सर्ब जिया का रखा सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी बारंबार बार प्रभ जपीए ई अमृत यो मन तन त्रपीए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृटाया नाम तन नम रूप रंग नम सुख हर नाम का संग नाम रस जो जन त्रिवतान ने मर्तन नामे नाम सुमा।

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बसारो चरण कमल हृदमय उरतारो करण कान सो प्रसमरथ गिरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाहे ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पजहर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्वन धान मै हर नाम धान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्धो हर कै नाए दस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ।

त्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण में हाजी है, मलह में कड्ढे तोय, सच वणन जय रंग स्यों, सच सौदा होए, टूटा मूल न आवई, लहार पावे सोए, नानक तिन सच वणन जया,

अंदर भय तप पाप कमाए और अंदरला पाप पंचा नु उगा कर वेख लिया तर मराए जम कंकरा नु आ छड़िया ए तपे नु तिथे खड़ पायो जिथे महा महा तैयारिया फिर इस तपे दे मुहे कोई लगो ना ही यो सतगुर है फिटकारिया हरके दर वरत्या सो नानक आज सुनाया सो बूझे जो दईये सवारिया महला चौथा हर भगता हर आराध्या हर की वड्याई हर कीर्तन भगत नित गाम दे हर नाम सुखदाई हर भगता नू नित नावे दी वड्याई बख्शियन नित चढ़े सवाई हर भगता नू थिर करी बहालियन अपनी पैज रखाई निंदका पासू हर लेखा मंगसी बोधे सजाई जिहा निंदक अपने जी कमाम दे ते हो फल पाई अंदर कमाना सर पर उगड़े पावे कोई बै धरती विच कमाई जन नानक देख विकसिया हर की वड्याई पौड़ी महला पंजवा भगत जना का राखा हर आप है क्या पापी करिए गुमान करे मूड गुमानिया विस खादी मरिए आए लगेनी दे थोड़े क्यों पक्का खेत लुनिए जे कर्म कमाम दे तेरे हो पणिए जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा तणिए श्लोक महला चौथा मनमुख मूल नो पुलिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करद्या अन दिन गुजरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करते सभे लई बोलन सविकार दिते किते ना संतोखी है अंतर तसना बहु अज्ञान अंधियार नानक मन मुखा नालों टुटी पली जिन

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलतना जापनी ओ सके ना लखे। सलोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यो सब केश जिसके हाथ पुमित्रा से ही कंडी है एक वेखना चल है साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पी वो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गोर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुल जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई। सलोक महला पंजवा डिठड़ो हबठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुवाओ।

राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत न पाइए, जे पावक सुर नर है जारे, राम उदक जन जलत उबारे, पाव सागर सुख सागर माही, पीवरे जल निखुटत नाही, कहे कबीर पज सार्ग पानी, राम उदक मेरी तिखा बुझानी, गौड़ी कबीर जी माधव जल की प्यास न जाए, जल में अग्न

तू तरवर हो पंखी आहे, मद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर आओ नाओ तन चेला, कहे कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी जब हम एको एक कर जाने आ, तब लोगे काहे दुख माने आ। हम अपत अपनी पद खोई, हमरे खोज परो मत कोई रखाओ। हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू सो नाही।

फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम, जब ने चीन से आत्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राग जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बेन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ए सब धर्म राय कै जाही रहाओ, काया रत बहरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर, कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट

आप मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे काल हम बहुत बसाए, जब हम आराम गर्भ हो आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा शत्रपत कबहू पेघारी। सागत मरे संत सब जीव, राम रसायन।

हर हर बास सुगंध बसाई तहर कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब तंदा गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जम ते उल्ट पए गए राम दुख बिन से सो कियो बिश्राम बैरी उल्ट पए गए मीता सागत उल्ट सुजन पै चीता अब मुझे सर्ब कुशल कर मानिया साध पई जब गोबिंद जाने आ रहा तन मैं होती कोड उपाध उल्ट पई सो सहज समाध आप शाने आपे आप रोग ना व्याप तीनों ताप अब मन उल्ट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ कहो कबीर सुख सहज समाव आप ना डरो ना अवर डरावो गौड़ी कबीर जी पिंड मुए जो के कर जाता शब्द अतीत अनाह धराता जिन राम जानिया तिने पछानिया ज्यो गूंगे साकर मन मानिया ऐसा ज्ञान कथे बनवारी मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी रहाओ सो गुर करो जे बौर ना करना सो पद रवो जे बौर ना रवना सो त्यान तरो जे बौर ना तरना ऐसे मरो जे बौर ना मरना उल्टी गंगा जमन मिलावो बिन जल संगम मन में नावो।

ऐसी रहत रहो हर पासा, कहे कबीर निरंजन त्याव, तित कर जाओ जे बौर न आवो। गौड़ी कबीर जी ते पदे कंचन स्यों पाईगे नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। अमोय राम अपना कर जानिया, सहे सुपाय मेरा मन मानिया रहाओ। ब्रह्मे कद कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मद त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जे मरने सब जगत तरासया, तो मरना गुर शब्द प्रगासया। अब कैसे मरो मरन मन मानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया रहाओ। मरनो मरन कहे सब कोई, सहजे मरे अमर होए सोई। कहो कबीर मन पया आनंद।

जे गंगा आनी बैठत उड़त कुटलता चाले, आप गए और नहुं काले, शाड़ को चर्चा आन न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने, आप गए और नहुं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे, आवर नभस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने, राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार, सदगुर प्रसाद जीवत पितर ना माने को, मुए सराध कराही पितर पी बपरे को क्यों पावे, कौआ कुकर खाही मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसे,

इस माटी में पम समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिन सजाए अंकारी गौड़ी। राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार्षद एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रखाओ, गर्भ जोन में उर्तव करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत उरासी जोन प्रमे आयो, अब के शुटके ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त जिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परमन धान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपे देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपे त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोय नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस और रखाओ, और मुए क्या रोई है, जो आपा थिर ना रखाए, जो उपजे सो बिनस है, तो का रोवे बलाए, जय की उपजी तै रची, पीवत मर्दन लाग, तय कबीर किद चेतया, राम सिमर बैराग, राग गौड़ी पंथ निहारे कामनी, लोचन परी ले उसासा, और ना पीजे पग ना खिसे, हर दर्शन की आसा, उड़ो ना कागा कारे, बेग मलीजे अपने राम प्यारे रहो, कहे कबीर जीवन पद कारण, हर की पगत करीजे, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवीजे, राग गौड़ी ग्यारवी, आस पास कण तुरसी का बिरवा, माज बनारस गाऊ रे, हुआ का स्वरूप देख मुई ग्वारन, मोको छोड़ न आऊ न जाहू रे, तुहे चरण मन लागो सारंग तार, सो मिले जो बड़ भागो रघाओ, बिंद्राबान महरन मनोर, कृष्ण चिरावत गाऊ रे, जाका ठाकुर तुही सारंग तार, मोहे कबीरा नाऊ रे, गौड़ी पूर्वी बारवी, बिपल बस्तर केते हैं पैरे, क्या मन बदे बस, कहां पया नर देवा धोखे, क्या जल बोरयो ज्ञाता, जियरे जाएगा मैं जाना, आगत समझ ए आना, जब जब देखो बौर ना पेखो, संग माया लपटाना रखाओ, ज्ञानी त्यानी ब उपदेसी, यो जग सुग लो तंडा, कहे कबीर एक राम नाम बेन, या जग माया अंधा, गौड़ी बारवी मारे छाडो परम, पलट होए नाचो, या माया के डांडे, सूर के सनमुख रन ते डर पे, सती के सांचे फांडे, डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद पाइये, लीनो हाथ सुंधौरा रहाओ, काम क्रोध माया के लीने, या फिर जगत बिगूता, कहे कबीर राजा राम न छोड़ो, सगल ऊचते ऊंचा गौड़ी तेरवी, फुरमान तेरा सिरे ऊपर, फिर न करत भी चार, तुही दरिया तुही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी एक तैयार, साहिब रोस तरो के प्यार, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार, कहे कबीर गुलाम कर का, जियाए पावे मार, गौड़ी लग चौरासी जी जोन में, प्रमत नंद बोथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो होए, आग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दस नाही, तब यो नंद कहां थोरे रहाओ।
संकट नहीं परे, जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा के माई ना बापोरे, गौड़ी

बैकुंठ जाइए ना पदार्थ मने बसाइए। हृदय सुजो निंदा होए हमरे कपड़े निंदक तोए, निंदा करे सो हमारा मीत निंदक माए हमारा चीत। निंदक सोजो निंदा हो रे हमारा जीवन निंदक लोरे, निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमारा करे उधार। जन कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो तरन तरन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक पय है एक के देखत मन पतिया ही। जब बुध होती तब बल कैसा अब बुध बल ना खटाई। कहे कबीर बुध हर ली मेरी बुध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बंदी बस अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्प प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मान जागत हो रे पाई गाफल हुए के जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ पंच पैरुआ दर में रहते इनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चेत हुए रहो तौले प्रगास उजारा। नाव कर देख जो कामन पूली बस अनूप न पाई। कैत कबीर नवे कर मुसे दसवें तत् सुमाई। गौड़ी माई मुहे अवर ना जान्यो आना ना। फिर सुनकाद जस गुण गावे तस बसे मोरे प्राणाना। रहाओ हृदय प्रगास ज्ञान गुरगमत गगन मंडल में त्याना। बिखेरो पय बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमतरत जान मान प्राप्त दूसर मने ना आना ना। चंदन बाज पय मन बासन त्या कट्यो अब माना ना। जो जन गाये त्याय ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़पा बस्यो मन जाके कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सह प्रगास्यो एक एक समाना ना। कहे कबीर गुर पेट महासुख परम तरह मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बामन अक्ष

चरलो त्रै सब कुछ इन गीम आ गए, ए अखर खिर जाएंगे, ओए अखर इन मैन आ गए, जा बोलते चिरे आवा, जय अबोल तय मन ना रखावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लखे ना कोई, अले लहो तो क्या कहो, कहो ता को उपकार, बड़क बीज मैं रव रहे हो, जा को तीन लोग विस्तार, अले लहनता पेद शय, कश कह पायो पेद, उल्ट पेद मन पेद्यो, पायो अपंग अशेद, तुर्क तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारण, कशुक पढ़िए ज्ञान, ओंकार आद मैं जाना, लिखर मेटे ताए न माना, ओंकार लखे जो कोई, सोई लख मिटना ना होई, कक्का किरण कमल में पावा, सद विकास संपट नहीं आवा, आर देता कुछ मरस पावा, आके कहा कह का समझावा, खखा ए खोड़ मन आवा, खोड़े शाड ना दैद स्तावा, खसमे जान खिमा का रहे, तो होए नख्याओ अखय पदल है।

भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंभ अहेर अखंड सो रही जाए तो अनहद बेण सहज मय बाय सोमवार सज अमृत चरे त्यागत बेग सगल बिखरे।

ना तरखर हृषय गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यो लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्ट न पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए जोत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम सुन ला गोरंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारी ले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामन तारी ले चरण बदक जन तेउ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रविदास जी के पदे गौड़ी गुवारेरी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोत सोज दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति राम गुसैया।

गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारे होर न कार्ज न होई जित कार्ज सर संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई पंत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनु नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रो बन समसर सह सुपाए दुरमत गात पई कीर्त ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाओ सतगुर सेव पाए निजताओ मन चूरे खट दर्शन जान सर्व जोत पूर्ण भगवान रखाओ अधिक त्यास पेख बो करे दुख बिखिया सुख तन परखर काम क्रोध अंतर तन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तर सिफत सलाहन सहज आनंद।

गुर सबदी हर पार लंघाई हरहाओ जिनको आप लय प्रामेल जिनको काल न सके पेल गुरमुख निर्मल रहे प्यारे ज्यों जल अंब ऊपर कवन निरारे बुरा पला को किसनु कहिए दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लइए अकथ कथो गुरमत विचार मिल गुर संगत पावो पार सात वेद सिमरत बो भेद अड़सड़ मजन हर सरेद गुरमुख निर्मल मैल ना लग नानक हिरदय नाम वड़े तुर पग आसा महला पहला नेव ने पाए लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत विचार हिरदे हर रविया हिरदे देख विचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन घर लभ मिटे अज्ञान होए उजियारा हरहाओ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे विच होमे परम न जाई सतगुर मिले तहोमे टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वचल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारे मन स्यो जूझ मरे प्रपाए मनसा मने सुमाए नानक कृपा करे जग जीवन सहज पाए लिवलाए आसा महला पहला किस को कहे सुनावे किस को किस समझावे समझ रहे किसे पढ़ावे पढ़ गुण बूझे सदगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर पाज मेरे मन गैर गंभीरा रहाओ अंत तरंग भगत रंग अनदन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म सागत संसार राम भगत जन रहे निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रहे लिवलाया आद पार अपरंपर हीरा लार लता मेरा मन तीरा कथनी कह कह से मुए सो प्रदूर नाही प्रतू है सब जग देखिया।

मन का अंधला माया का बंद कीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेख है तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीप दे भौजले डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

आए, नदर करे ता सदगुरु मिले, परमत नानक पहुंचल तरे। आसा महला पहला पंच बदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उदबुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। हरहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन ना वाजे, तरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। अखर देख बाग पै चोखी, सिंचित भाओ करेगी, सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेगी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावे जियो रहे नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जा जीवा ता जूत नाही। कहे नानक जीवाले जिया, जय पावे है राख तुही। आसा महला पहला, काया ब्रह्मा मन है धोती, ज्ञान जनेऊ ध्यान कुसपाती। हर नामा जा जा चौनाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच

पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन खारो, पंच सखी मिल दुन करेगा, सौ पजूता प्रणत नानक लेखा देख, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा कर सेवा महला पहला, मन मोती दे गहना होवे पौन होवे सूत तारी, खिमा सिगार कामन तन पैर, रावे लाल प्यारी, लाल बहुगुण कामन मोगी, तेरे गुण होए न अवरी रहाओ, हर घर घर कंटले पैर, दा मोदर दंत ले, कर कर करता कंगन पैर, इन चित तेरे मसूदन करमुंदरी पैर, परमेसर पट ले, तीरज तड़ी बंधावे कामन, श्री रंग सुरमा दे, मन मंदिर जे दीपक जल, काया सेज करे ज्ञान राओ, जब सेज आवे ता नानक भोग करे, आसा महला पहला, कीता होवे करे कराया, क्या कहिए पाई, जो कुछ करना सो कराया, कीते क्या चितराई, तेरा हुकुम पला तु पावे, नानक ताको मिले वडाई, साचे नाम सुमावे रहाओ, किरत पया परवाना लिखिया, बहुत हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सके कोई।

तू सब नाका सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार नकाई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किस पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग गुर के शब्द सच्चे बैराग, खड़ दर्शन वरते वरतार गुर का दर्शन अगमे पार। गुर के दर्शन मुक्त गद होए साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा पाओ प्यारा लाए विरला कोए। गुर के दर्शन सदा सुखोए, गुर के दर्शन मुख द्वार सदगुर सेवे प्रवास सधार। निगुरे कौ गद काई नाही अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख सांत शरीर गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल नेड़ न आवे नानक गुरमुख साज सुमावे, आसा महला तीजा शब्द मुआ विचू आप गवाए। सदगुर सेवे तिल ना तुमाए निरपो दाता सदा मन होए। सती बाणी पाए पाग कोए गुण संग्रह विचू अवगुण जागे, पूरे गुर के शब्द समाहे। रहाओ गुणा का गाहक होवे सो गुण जाने, अमृत शब्द नाम खाने। साची बाणी सुचा होए गुण ते नाम प्राप्त होए, गुण अमोलक पाए ना जागे। मन निर्मल साचे शब्द समाहे, सेवड फागी जिन नाम ते आया सदा गुणदाता मन वसाया। जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। आपे देवे सहे सुपाए नानक कीमत कहण न जाए। आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी वड्याई, चिरी विशुन्ने मेल मिलाई आपे मेले मेल मिलाए। अपनी कीमत आपे पाए हर की कीमत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर गुर के शब्द मिले जन कोए। रहाओ गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए। ऊची बाणी ऊचा होए गुरमुख शब्द वखाणे कोए, विण नावे दुख दर्द शरीर सागुर पेटे ता उतरे पीर। बिन गुर पेटे दुख कमाए मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए पीवत रह पियाए सोए। गुर कृपा ते हर रस पाए नानक नाम रते गद पाए। आसा महला तीजा मेरा प्रसाचा गहर गंभीर, सेवत ही सुसां शरीर शब्द तरे जन सह सुपाए। तिन के हम सद लागे पाए जो मन राते हर अंग लाए, तिन का जन्म मरण दुख लाता ते हर दरगे मिले सुपाए। रहाओ शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए। हर पर सदा रहा भरपूर आपे नेड़े आपे दूर, आखने आखे बके सब कोए आपे भविष मिलाए सोए। कहने कथन न पाया जाए गुर प्रसाद वसे मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए हर अंग राते मोह चुकाए। अत निर्मल गुर शब्द विचार नानक नाम सुवारण हार। आसा महला तीजा दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया। सदगुर सेवे सोझी होए दूजे पाए न लागे कोए, मूल लागे सृजन प्रमाण अन दिन राम नाम जग हिरदे। गुर शब्दी घर एको जान, रखाओ डाली लागे ने फल जाए अंधी कमी अंध सजाए। मनमुख अंधा ठौर न पाए दिष्टा का कीड़ा दिष्टा माए पचाए। गुर की सेवा सदा सुपाए संत संगत मेल हर गुण गाए। नामे नाम करे विचार आप तरे कुल उदरन हार, गुर की बाणी नाम जाए नानक महल शब्द कर पाए। गुरमत सत सर हर जल नाया
ਦੁਰਮਤ ਮਾਇਲ ਸਭ ਦੁਰਤ ਗਵਾਇਆ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਨਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੂਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੈ ਪਰਮੇ ਵਿਚ ਸੂਤਾ। ਮਰ ਮੋਇਆ ਸਭ ਦੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਿੰਦਾ ਗੁਰ ਸਮਝਾਣ ਆਈ। ਇਹ ਯੁਗ ਮੈਂ ਲਹਾ ਹਰ ਜਪ ਲੈ ਜਾਏ, ਰਹਾਓ ਨਾ ਵਿਹੂਣ ਗਰਭ ਗਲ ਜਾਏ। ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਏ, ਨਾ ਵਿਹੂਣੀ ਦੁਖ ਜਲੇ ਸਬਾਈ। ਸੌ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਬਹੁਤ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਇਥੋਂ ਛੁਟਕਿਆ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ, ਗਰਭ ਜੋਨ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾਵਾਸ। ਇਤ ਕਰ ਮਨ ਮੁਖ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਾ ਬਲ ਜਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਈ, ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਨਿਰਕਰ ਵਾਸਾ। ਨਾਨਕ ਹੋਮੇ ਮਾਰੇ ਸਦਾ ਉਦਾਸਾ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਲਾਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਗੁਵਾਈ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਸੁਖਾਈ। ਸੋ ਲਾਲਾ ਜੀਵਤ ਮਰੇ, ਸੋ ਹਰਖ ਦੁਇ ਸਮਕਰ ਜਾਣੇ।

आप रूप न जाए तेगा होवे जेगे कर्म कुमाए सबदे ऊंचो ऊंचा होए नानक साज सुमावे सोए आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सह सुपाए गुर के पैसा ते साज सुमाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन खरुण ने अपनी पद खोए मेरे मन हर जब सदा त्याए सदा आनंद होवे दिन राती जो इच्छे सोई फल पाए हरहाओ गुरपूरे ते पूरा पाए हृदय शब्द सच नाम साए अंतर निर्मल अमृत सरनाए सदा सूचे सा सुमाए हर प्रवेखे सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ ते वेखा सोए गुरबिन दाता अवर न कोए गुर सागर पूरा भंडार उत्तम रतन जवार पार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा महला तीजा गुर सायर सतगुर सासोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बिनासे अनदिन जागे वेखे ससोए रहाओ मोह गुमान गुर शब्द जलाए पूरे गुरते सोजी पाए अंतर मैल गुर शब्द पछाणे आमन जान रहे फिर नाम सुमाने जमन मरना गे संसार मानमुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा बो कूड़ कमावे रिश्ता का कीड़ा रिश्ता मय सुमावे सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पग दृढ़ाए पाणा मन्ने सदा सुख होए नानक सच सुमावे सोए आसा महला तीजा पंच पदे शब्द मेरे ते सदा आनंद सतगुर भेटे गुर गोबिंद ना फिर मरे ना आवे जाए पूरे गुरते सा सुमाए जिन को नाम लिखिया तुरलेख ते अनदिन नाम सदा ते आवे गुर पूरे ते भगत सेख रखाओ जिन को हर प्रभ लय मिलाए इनकी गैन गद कही न जाए पूरे सदगुर दित्ती वड्याई उत्तम पदवी हर नाम सुमाई जोश करे सो या पे आप एक कड़ी में था प्यो थाप कह कह कहना आग सुनाए जे सो काले थाए न पाए जिनके पोते पुन्न इन्ना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां जुग जाए ज्ञान रतन सचे सह सुमाए नावे जेवड होर तन नाही कोए जिसनु बख्शे सचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा महला तीजा नृत करे बोवा जे वजाए यो मन अंधा बोला है किस आग सुनाए अंतर लोक परम अनलवाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप शान मिले प्रसोए रहाओ गुरमुख नृत कर लागे पाओ पूरे ताल विचू आप गुवाए मेरा प्रसाचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सस होए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा पवजन जीव तुमर गुर प्रसादी पवज तर गुर के बचन भगत पाए हर जु आव से मन आए हर कृपा करे सदगुरु मिलाए निचल भगत हर सिउ चित लाए भगत रते तन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए आसा कर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद हर के पाने सदगुर मिले सच सोजी होई गुर प्रसादी मनस हर बूझे सोई मैं सो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मनस ता सदा सुख होई रहाओ ये जुग में निरपोहर नाम है पाइये गुर विचार बिन नावे जम के वस है मनमुख अंधगवार हर के पाने जन सेवा करे बूझे ससोई हर के पाने सलाई है पाणा मने सुख होई हर के पाने जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाए तू गुरमुख गत होई आसा महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
तू करता सत्यार मैं डसाई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रखाओ सब तेरी तू सब नहीं त्याया जिसनु कृपा करे तिन्ना अमृतन पाया गुरमुख लादा मानव गवाया तुद आव छोड़िया

को आया वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्ले आनी देख रतन ओ मल बटानी सहा व्यापारी द्वारे आए वखर काढ़ो सौदा कराए रहाओ सहे पठाया सहे पास अमोल रतन अमोला रास विट सुभा।

भाग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिष्ट पाए सगल निधान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद खुशियां सदा रंग माने,

पंजवा निट जी कै सदगी संगा कुदरत वर्त रूप अर रंगा करै ना चुरै ना मन रोमन हारा अवनासी अवगत अगोचर।

हर असचोट होशे रसमाता कारमय वस्त बार उड़ जाता तूने न जाई सच अमृत काथा रार करत झूठी लगाथा रहाओ वजो साहिब का सेव बैरानी ऐसे गुने अशाद्यो प्राणी ते स्यो लूग जो सद ही संगी ताम न आवे तो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यों पावे त्यों कर प्रतिपा।

रब रहे आपर सबके साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

पुर पूरे अंध भयासा मिटे रसूरे हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बाशत नाही सो बेला आई बिन हुक्म है क्यों बुझे बुझाई ठंडी ताती मिट्टी खाई ओ ना बाला बूढ़ा पाई हरहाओ नानक दास सास सरनाई गुर प्रसाद को पार पराई आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास साध संगत हर चरण ने।

राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे केलबक जाहे सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म सागुर फेटे पूर्ण पार ब्रह्म।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एके सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारावारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत अगोचर। यो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करे चतराई। जा सब तुझे मझार, मेरे सतगुर अपने।

मुक्ते एव बबाड़े। आया हुक्म पार ब्रह्म का, छोड़ चलिया एक दिहाड़े। कर्म धर्म जुगत बो करता, करने हार न जाने। उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आया ना गोजासी, ज्यो हस्ती खाक शाने। संत सज्जन सुनो सा मीता, झूठा यो पसारा। मेरी मेरी कर कर डूबे, खा खा मोए गवारा।

लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, राग आसा, कार सेवा, महला पंजवा, जो तुद पावे सो परवाना, सूग सहज मन सोई।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक ऐ ला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया, रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रखे, ओ किस पे करे बुकारा, निंदकी गत तथु नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रुढ़ाई, आसा महल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुसरोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सुई डोरा, रहाओ, माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बांच ने मुनियादा, बिनस गया तद काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर दी जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, तर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, आज के वसगुर तीनो केहर, कुकर तने लगाई रे, रहाओ, बाज तूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, टूपी नरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काड़ बसारे अवगुण, अपना बिरद संहारिया, होए कृपाल माधपित न्याई, बारग जो प्रदपारिया, गुर सिख राखे गुर गोपाल, काढ़ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साध संग दुख नाठे, छिजे न जाए कि पौ न व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्रपय सहाई, एत उतरा कनहारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तुद बिन के सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार, रहाओ, जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाइए, विण नावे सज बौराया, नाम मिले सुख पाईए, क्या कहिए, किस आग सुनाइए, ये कहना सो प्रभु जी पास, सब कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई, ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंत्र मेरा ठार थियो,
ਰਹਾਉ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਯੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਯੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰਤੁਮਰੇ, ਹੈ ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਕੀਓ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤੁਮਰਾ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲਿਓ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗਿਓ, ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਤ

गुरपूरे के चरण गए, कोड़ जन्म के पाप लहे, रतन जन्म तो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना ही ताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपने खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक और परम पोखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। पुगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुर अपनी, कर किरपा रखो सरनाई, मोको देव हरे हर जपनी, रहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब कित का होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो कुछ करे सोई फल जान के, आत निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण को लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नामा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परमो जोन पवाया, अस्तर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेवक तेरा।

सदा प्रफुल्ल काट काट संपट है रे जाका अपाग सब संघ है सदा आरती कीर्तन सदा आनंद महिमा सुंदर सदा बेअंत जिसे प्राप्त इसी लेना संत चरण ओ आयो शरणा आचर

पार ब्रह्म के संगी साध चित्तर गुप्त सब लिखते लेखा भक्त जिना को दृष्ट न पेखा कहो नानक जिस सदगुर पूरा वाजे ताके अनगर तूरा आसा महला पंजवा दो पदा एक साधु संग सखायो नाम सर्व मनोरथ पूर्ण काम बुझगी तिशना हर जसे अगाने जप जप जीवा सारग पाने तरन करामन सरन परया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़या रहाओ लाल जवेर परे पंडार टूट न आवे जप निरंकार अमृत शब्द पीवे जन कोए नानक ताकी परम गत होए आसा कर सतवा महला पंजवा हर का नाम हृदय निर्ध्याई संगी साथी सगल तराई गुर मेरे संग सदा है नाले सेमर सेमर तेस सदा संभाले रहाओ तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे आसा महला पंजवा साधु संगत तरिया संसार हर का नाम मने आधार चरण कमल गुरुदेव प्यारे पूजे संत हर प्रीत प्यारे रहाओ जाके मस्तक लिखया भाग कहो नानक ताका फिर सुहाग आसा महला पंजवा मीठी आग्या फिर की लागी सौकन कर की कंत त्यागी प्रे सुहाग सीगार करी मन मेरे की तप्त हरी पलो पयो प्रे कहया मानया सुख सहज इस कर का जानया रहाओ हो बंदी प्रे खिजमत दार ओ अवनासी अगमे पार ले पख प्रे चिल्लो पाए भाग गए पांच दूत लावे ना मैं कोल ना शोभावंत क्या जाना क्यों पानी कंत होए अनाथ गरीब निमानी कंत पकर हम की नीरानी जम प्रीतम साजन लागा सुख सहज मेरा तन सोहागा कहो नानक।

ऐसी स्त्री एक राम उपाई, उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई। रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया, गुरमुख नाम लगे से सोया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीर्थ पवे सब तरना, से उबरे ये सदगुर की सरना, माया मोहे सबो जग बाधा, हमे पचे मनमुख मुँह राखा, गुरु नानक बाँ पकड़ हम राखा। आसा महला पंजवा, सर्व दुख जब सरे स्वामी, ईगा उहा कामना प्राणी, संत त्रिपता से हर घर त्याय, हर कृपा अपने नाए लाए, सर्व सुख पर तुमरी रिजाए। रहाओ संग होवत को जानत दूर, सो जन मरता नित नित चूर, जिन किसी दिया ते चित नाहे, मां बिखिया में दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रसिमरो एक, गद पाएगे गुर पूरे टेक। आसा महला पंजवा, नाम जबत मन तन सब हरिया, काल मर दोख सगल पर हरिया, सोई दिवस पला मेरे पाई, हर गुण गाए परम गद पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे उपद्रे मन ते बैर, गुर पूरे मेल चगर चुकाया, पांच दूत सब वसगत आया, जिस मन

अन टेक है सो जानो काचा हराओ तेरा हुकुम अपार है कोई अंत न पाए जिस गुरपूरा पेड़ सी सो चले रह जाए चितराई सियाणपा किते काम न आई है तुठा साहेब जो देव है सोई सो पाई है जे लख कर्म कमाई है ई पवे ना बंधा जन नानक कीता नाम तार होर छोड़िया तंदा आसा महला पंजवा सर सुखा में पालिया हर जेवड ना कोई गुर तुठे ते पाई है सच साहेब सोई बलिहारी गुर अपने साध सर कुरबाना नाम ना विसरो देखन चसा क्यों कीजे दाना रहाओ भागट सच्चा सोए है जिहर तन अंतर सो छूटे महा जाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कह गुर विवेक सत सार हो आज उगादि जुग है जुग पूरा परमेश्वर नाम ते आवो सद सदा हर घर मन रंगे जियो प्राण तन गुरु है नानक कह संगे आसा महला पंजवा साई अलख पार घोरी मन वसे दुख दर्द रोग माए मैंडा हव नसे हो वन्या कुर्बान साई अपने होवे अंधकणा मन तन जापने रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस तनी सुखी हूँ सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए टेक मुस्ताक पही मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई बेक तेव संसार हब्बा हूं बहारा नानक का पात साहो दिसे जहारा आसा महला पंजवा लाग भगत आराध्य जब ते पियो पियो कवन जूत में लावो निर्गुण बखई जियो तेरी ते गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सब ना के नाथ तेरी सिट सब रहाओ सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन विसूर विसूर दास दासन पाए मिटिया तिना गौन विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन जैसे पस हरे आओ तैसा संसार सब नानक बंधन काट मलावो आ प्रभ आसा महला पंजवा हब्बे थोक विसार इको ख्याल कर झूठा लाए गुमान मंत्र अर्प तार आड़ पैर सार आहे सिरजनहार तू जीवा तेरी दात किरपा करो मुंह रहाओ तोई कम कमाए जित मुख उजला सोई लगे सच जे तू दे अला जो न टहंदो मूल सो कर रास कर इको चित वसाए कदे ना जाए मर तिना प्यारा राम जो प्राप्त पाणिया गुर प्रसाद अकथ नानक वखाणिया आसा महला पंजवा जिन्ना ना विसरे नाम से कनेहा हेद न जानो मूल साई जेया मन तन होए निहाल तुम संग पेटिया सो पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन मुठा आप पूरे भगत से जिसनु मने आप सोई मानिए प्रगट पुरख प्रवान सब ठाई जानिए दिन सरैन आरात संभाले साहा सहा नानक की लोचा पूर सचे पातशाह आसा महला पंजवा पूर या सर्व ठाए हमारा खसम सोए एक सहब सिर छत दूजा ना है कोय जो पावे त्यों राख रखन हारिया कोई बिन अवर न कोय नदर निहारिया रहाओ प्रद पाले प्रवे आप धड़कड़ सारिये जिस मन उठा आप तिस नाम सारिये जो करे सो आप अपन पाणिया भगता का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हरका नाम कदे ना चूरिये नानक दर्श प्यास लोचा पूरिये आसा महला पंजवा क्या सोवे नाम सार गाफल गह लिया किती ए दरियाए वंजन वहन्दिया बोतड़ाहा चरण मन चढ़ लंगीए आड़ पैर गुण गाए साधु संगीए रहाओ भोगे भोग अनेक विण नावे सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया तप्पड़ पो सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चालना मां विघम संसार विरले पेखिया छूटन हर की शरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई ना किसी संग काहे गर्बीए एक नाम आधार पौजल तरबीए।

मेरा तेरा जानता तब गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना।

सदगुर प्रसाद चितव चितव सर्व सुख पाव आगे पाव के ना पाव एक दा तार सगल है जाजक दूसर कह पे जाव औ मांगो आन ले जाव सगल शदर पद एको ठाकुर कौन समसर लाव हरहाव उठो बैसो रह के ना सको दर्शन खोज खुजाव ब्रह्मादक सनकादक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको मैल दुलभाव आगम आगम अगाध बोध तीमद परय ना पाव ताकि शरण सदपुरख की सदगुर पुरख ते आव पयो कृपाल दयाल प्रभु ठाकुर काट्यो बंद कराव कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म न आव आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो गावो जाग सवारी संग चलन।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुरमन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नयन दर्श देखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सदगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवा जिसनु तू अस्थिर कर मान है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्र गृह सगल समगरी सामित्या असनाहा रे मन क्या करे है हा हा रिट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन ले लाहा रहाओ जैसे वस्त्र दे ओढ़ाने दिन दो चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत कोर को आहा जैसे अंब कुंड कर राख्यो परत सिंध गल जाहा आवग आग्या पार ब्रह्म की उठ जासी मोत चसाहा रे मन लेखे चाले लेखे वैसे लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवा अबुट बाते पई सिदरी दूत दुट सजनई अंधकार में रतन प्रगासियो मलीन बुद्ध खशनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सदगुर मिलई हरहाओ मुए किरपन को कोई न जानत सगल पवन प्रगटई संग बैठनो कई न पावत हुन सगल चरण सेवई आड़ आड़ को फिरत टूंढते मन सगल कृष्ण बुझ गई एक बोल भी खपतो नाही साल संत सीत लई एक जी गुण कम वखाने आगम आगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर शरणई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेगताया सत वखर तू किन्ने नाही पापी बद रे नाया सदगुर तेरी आसाया बदल पावन तेरो नाम पार ब्रह्म मैं एहा ओटाया रहाओ गंदन वैन सुने उरझावे नाम लयत अलकाया निंद चिंद को बोध उमायो बुझी उलटाया पर तान पर तान परती निंदा अखाद खाए हरकाया साज धर्म से रुच नहीं आवे सत सुनत शोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरनाया नानक आए शरण प्रभ आयो राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथ्या संग संग लपटाए मोह माया कर बांधे जय जानो सो चीत न आवे अंग बुद्ध पै आंधे मन बैरागी क्यों न आराधे ताज कोठरी माहे तू बसता संग सगल दिखे की व्यदे रखाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिखावे पलखिन शीजे अर जादे जैसे मीठे साध लुभाए झूठ तन दुर्गद काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंदी रस लपटा दे दीप वारी पुख बिधाते बौर बौर जन माधे जो पयो कृपाल दीन दुख पंजन तो गुरमिल सब सुख लादे कहो नानक जिन रैन तिहावो मार काढ़ी सगल उपादे त्यो जप्यो पाई पुरख बिधाते पयो कृपाल दीन दुख पंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुदुख पावे

भगत परम पौ नस हर नानक सदा हजूर आसा मोहल्ला पंजवा आगम अगोचर दर्श तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग आप किरपाल किरपा प्रतारी सदगुर बख्शिया हर नाम काल युग उधारिया गुरदेव मालमूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव रखाओ तू आप करता सब सृष्ट तरता समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ सब पई पैरी आए साजुग त्रेता द्वापर पणिए काल युग ऊतमो जुगा माघे अहे कर करे सो अहे कर पाए कोई ना पकड़िए किसे थाए हर जियो सोई करे

मो कुटुंब दिखे रसमाते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संग तेल मर्म न लहे कर कृपा रखे सत्संग नानक शरण आहे आसा मोहल्ला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नहे नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत उत खड़ खट खड़ खट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला हरहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आगे हरहाओ नाम पदार्थ हुए सकारत हृदय चरण बसागे

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नाम साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रवलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मनमुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम खाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास किल दुख काटे हर नाम प्रगास कर विचार आचार पराता सदगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल सागत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना एक तुत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लहे कर आपे बिन गुर शब्दे मन नहीं ठौरा सिमरो राम नाम अत निर्मल अवर त्यागो होमे कौरा रहाओ यो मन मुगध कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बगसे सदगुर मिले काल कंटक मारे सज पेल यो मन कर्मा यो मन तर्मा यो मन पंच तद ते जन्मा सागत लोभी ओ मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख तेरे पमन सोजी होई यो मन जोगी भोगी तब तप गुरमुख तीने हर प्रवे आपे मन बैरागी होमे त्यागी कड़ कड़ मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखे दार कर मैलनी हार पत राखे यो मन राजा सूर संग्राम यो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए होमे ग्रास एक दिखाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख यो मन भगती जागे अनघ सुन मान्या शब्द विचारी आत्मा चीन पय निरंकारी यो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहे निस हर जस गुर प्रसाद कड़ कड़ सो प्रभ आ जुगात राम रसायन यो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा आसा महला पहला तन बिर से तन का को कहिए बिन गुर राम नाम कत लईये राम नाम तन संग सगाई आयरस निर्मल हर लिवलाई राम नाम इन कमन हमारा सुख दुसम कर नाम न छोड़ो आपे बगस मिला मनहारा अरहाओ कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम सारा जिस तू बगसे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुन गाए हर गुरदाता राम गोपाला क्यों पावे त्यों राख दयाला गुरमुख राम मेरे मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रगाया आवर न औखद तंत न मंता हर घर सिमरन केल वखंता तू आप भुलावे नाम सार तू आपे रखे कृपा तार रोग परम पेद मन दूजा गुर बिन परम जपे जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखे बिन गुर सब दे जन्म के लेखे देख अचरज रहे विस्माद कट कट सुर नर सह समाध परपुर तार रहे मन माही तुम संसर अबर को नाही जा की भगत हेत मुख नाम संत भगत की संगत राम बंधन तोरे सहज त्यान छूटे गुरमुख हर गुर ज्ञान ना जमदूत दूत लागे जो जन राम नाम लिव जागे भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕ ਤੁਕੀ ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾਣੇ ਦੁਖ ਮਿੱਟੇ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੇ ਆਰਾਮ ਜਪੋ ਮੇਰੀ ਸਖੀ ਸਖੈ ਨੀ ਤਦ ਗੁਰ ਸੇਵ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਣੈ ਨੀ ਰਹਾਓ ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਬੰਧਨ ਸੁਧ

कोई दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख।

सदगुर हमरा परम गवाय, हर नाम निरंजन मन वसाया, शब्द तीन सदा सुख पाया। सुन मन मेरे तत् ज्ञान, देवन वाला शब्द जाने, गुरमुख पाए नाम निधान। रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई, जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई। सहजे माता हर गुण गाई, बिन गुर पूरे कोय न जानी। माया होए दूजे लोभानी, गुरमुख नाम मिले हर बाणी। गुर सेवा तपा सिर तब सार, हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार। दर साचे दिसे सत्यार, गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए। आप शान घर पावे सोए, साची बाणी महल प्राप्त होए। गुर सेवा ते सब कुल उधारे, निर्मल नाम रखे उर तारे। साची शोभा साज दुआरे, सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए। आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए, नामे उधरे कुल सबाए। नानक साज कहे विचार, हर का नाम रखे उर तार। हर भगती राते मोह द्वार, आसा महला तीजा। आसा आस करे सब कोई, हुक्मे बूझे निराशा होई। आसा विच सुते कई लोई, सो जागे जागावे सोई। सतगुर नाम बुझाया, विण नावे भुख न जाई। नामे तिसना अगन बुझ, नाम मिले तसे रजाई। अरहाओ कल कीर्त शब्द पछान, एहा भगत चूके अवमान। सतगुर सेवे होवे परवान, जिन आसा कीती तिसनो जान। किस क्या दीजे जे शब्द सुनाए, कर कृपा नामा नमसाए। त्यो सर दीजे आप गवाए, हुक्मे बूझे सदा सुख पाए। आप करे तय आप कराए, आपे गुरमुख नाम साए। आप भुलावे आप मार्ग पाए, सच्चे शब्द सच सुमाए। सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी। मानमुख मोहे परम भूलाणी, बिन नावे सब फिरे बौराणी। तीन पवन में एक का माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा पाओ दृढ़ाया। वो कर्म कमावे दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सो पाया। अमृत मीठा शब्द विचार, अंदर भोगे हो में मार। तेज आनंद कृपा तार, नाम रते सदा सच प्यार। हार जा पढ़

दुहागनी मैल ना पायनी ना जानन फिर का सुहाओ। हिक्का बोले नानवे दूजा पाओ सुहाओ, क्यों मनुआ क्यों करवस आवे। गुर प्रसादी ठाकी है ज्ञान मती कर आवे रहाओ। सुहागनी आप सवारी ओन लाए प्रेम प्यार, तगुर के पाने चल दिया नामे सह सीगार। सदा रावे पिरे अपना सच्ची सेज सुपाए, फिर के प्रेम होइया मिल प्रीतम सुख पाए। ज्ञान अपार सीगार है तो बावंती नार, सास भराई सुंदरी फिर के हेत प्यार। सुहागनी विच रंग रखे होन सच्चे अलाखे पार, सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार। सुहागनी सीगार बनाया गुण का गलहार, प्रेम पिरमल तन लावना अंतर रतन विचार। भगत रते से उत्मा जात पात सब दे होए, बिन नावे सब नीच जात है दिष्टा का कीड़ा होए। हाँ हो कर दी सब फिर बिन सब दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई सच्चे रहे सुमाए। आसा महला तीजा सच्चे रते से निर्मले सदा सच्ची सोए, ऐथे कर कर जाप दे आगे जुग जुग प्रकट होए। ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना यो रंग ले ना जाए। हरहाओ हम नीच मैले अत अभिमानी दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोते पार। बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पए पाए जो रते सिवती सच सुमाओ। पए बिन लाग न लग गई ना मन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने झूठे ठाओ न कोए। जिसनु आपे रंगे सो रबसी ससंगत मेलाए, पूरे गुर ते ससंगत उपजे है जे सच सुपाए। बिन संगती सब ऐसे रहे जैसे पलटोर, जिन की तेत से ना जाननी विन नावे सब चोर। एक गुण विहाचे अवगुण विकणे

साध संग हर हर जपत निर्मल सा की रीत रखाओ दर्शन की प्यास तनी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिले साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो नाम है रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम से सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेखिए नित्य घर को नाओ धर्म तराई सास्यो नित्य पावे ठाओ नीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहू राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा।

परंपरा सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए, क्यों तन वेती संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गार बिखिया के फीके।

करो क्या प्राणी, जो किश होआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तासु पाव, सर्ब निरंतर हरब रहे या, टड्डे टाए उसारे आपे, यूं तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे उगम चलाए, तिस निस्तारे

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे। सेजा सुहावी संग तिरके सात सर अमृत परे। कर दया मया दयाल साचे शब्द मिल गुण गावो। नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह। मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम। मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम। ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे। तो गुण पिछाने ता प्रभ जाने गुणे वस अवगुण नसे। तुझ बाज एक तिल रह न सक कहन सुन ना तीजे। नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे। सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम। हर नामो वणजड़िया रस मूल अपारा राम। मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली। एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली। कारण कारण समरसरी तार आप कार्य सारे। नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार। हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम। रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम। अपना मर दिया हर वर लिया क्यों पावे त्यों रावे। तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे। बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने। नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोका।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे तिन जरा न मरना नरक न परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन है से जिन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़गे रता राम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन परतापे ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमके हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सद कहे नानक चेत रे मन मरे हर ना कालिया पावरा पूर पवंतया दुख अद पारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम विचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़िया परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साए मन मसे की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्ध कपाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सद कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जन चेतया बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया हर नाम भगत नारे साचा से अंत ताही रुन्या सदकहे नानक शब्द साचे मेल चिरी विशुन्या एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सुबाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाय नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तबत बुझाई राम शब्द तबत बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मुनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

तेरा गंड लागे गुरमंग सदा समाले। यों कहे नानक जय मन तू तामदा तय हर तेरे सदा नाले। सदगुर मिले तावत थम्या ने कर वस्या आए नाम या जे नाम लय नाम रहे सुमाए। तावत थम्या सदगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज तुन उपजे जित शब्द जगत थम रखाया ते अनेक वाजे सदा अंध है सच्चे रहा सुमाए। यों कहे नानक सदगुर मिले धारत थम्या नेकर वस्या आए। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण मन हर जी तेरे नाल है गुरमती रंग मान। मूल पछाणे ता सो जाण है मरण जीवन की सोझी होई गुर प्रसादी एको जाण है ता दूजा पाओ ना होई। मन सांत आई वजी वधाई ता होआ परवान इउं कहे नानक मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जाहे माया मोहनी मोया फिर जूनी पवाहे। गर्भ लागा जाए मुगद मन अंत गया पछतावे अहंकार सना रोग लगा बिरथा जन्म गवावे। मनमुख मुगद चेते नाही अगे गया पछतावे। इउं कहे नानक मन तू गर्भ अटिया गर्भ लदया जावे। मन तू मत मान करे ते हौ खज जानदा गुरमुख निमाणा हो। अंतर अज्ञान हो बुद्ध है सच शब्द मलख हो ओ निमाणा सतगुरु अगे मत किश आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर के पाणे करे कार सतगुर के पाणे लग रहो। इउं कहे नानक आप छड सुख पावे मन निमाणा होए रहो। तन सो वेला जित में सतगुर मिलिया सो चित आया मां आनंद सहज पया मन तन सुख पाया। सो चित आया मन वसाया अवगुण सब विसारे जांच पाणा गुण प्रगट होए। सतगुर आप सवारे से जन प्रवान होए जिन्नी एक नाम दिड़या दुतिया पाओ चुकाया। इउं कहे नानक तन सोवेला जित मैं सतगुर मिलिया सो चित आया। एक जंत परम फुले तिन सह आप फुलाए दूजे पाए फिरे होमे कर्म कुमाए। तिन सह आप फुलाए कुमारग पाए इनका किश ना वसाई तिन की गत अवगत तू है जाने जिन ए रचन रचाई। हुगम तेरा खरा पारा गुरमुख किसे बुझाए। इउं कहे नानक क्या जंत विचारे जा तुझ परम फुलाए

जोग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तब तापन तापय जग पुन आरंभ अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पाग दुए खिसकाया दुए पग टिके टिकाए जियो माज जोद बहु कीने विच हो में पते पचाए जियो दीन दयाल गुर साध मिलाया मिल सदगुर मल लय जाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए जियो कालजुग हर किया पग त्रैखिस किया पग चौथा टिके टिकाए जियो गुर शब्द कमाया औखध हर पाया हर कीर्त हर सांत पाए जियो हर कीर्त तुरत आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कालजुग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हिरदे नाम लखाए जियो कालजुग हर किया पाग त्रैखिस किया पग चौथा टिके टिकाए जियो आसा महला चौथा हर कीर्त मन पाई परम गद पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुरमस्तक पाग पुराण जियो तुरमस्तो पाग हर नाम सुहाग हर नाम में हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बो प्रगटी हर नाम में हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रापाया मिल सदगुर मनुआ मान जियो हर कीर्त मन पाई परम गद पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते ऊतम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सिरे वे खिन खिन भगत होवे जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारे गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नामा कंठ तारे सब ए दृट समत कर देख सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते ऊतम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई वे संगत हरस होए जियो हर हर आराध्या गुर शब्द वेगासया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हर अमृत सोए जिन पिया सोबध जाने तन तन गुरु पूरा प्रापाया लग संगत नाम पछाणे नामो सेव नामो आराध्य बिन नामे अवर ना कोए जियो सत संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हरस होए जियो हर दया प्रतारो पाखण समतारो कड़ ले वो शब्द सुभाए जियो मोची कड़ फाथे निगरत हम जाते हर भां प्रभु पकराए जियो प्रभां पकराई उत्तम मत पाई गुर चरणी जन लागा हर हर नाम जपया आराध्या मुख मस्तक पा

प्रयो सह सुभाई छोड़ न जाई, मन लागा रंग मजीठा। हर नानक बेदे चरण कमल, किश आन ना मीठा। ज्यों राती जल माछली, त्यों राम रसमाते राम राजे। गुरपूरे उपदेसया, जीवन गद पाते राम राजे। जीवन गद स्वामी अंतर जामी, आप लिगे लड़ लाए। रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो, छोड़ न कत हो जाए। प्राभ सुगर स्वरूप सुजान स्वामी, ताज की मिटे ना दाते। जल संग राती माशली, नान कर माते। चातक जाचे बूंद ज्यों, हर प्राण अधार आराम राजे। मार्ख जाना सुप्रात मीत, सब हूं ते प्यारा राम राजे। सब हूं ते प्यारा पुरख निरारा, ताकी गत नहीं जानिए। हर सास ग्रास ना बिसरे कब हूं, गुर सबदी रंग मानिए। प्रापुरख जग जीवनो, संत रस पीवनो। जब परम भो दुख डारा, चातक जाचे बूंद ज्यों। नान कर प्यारा, मिले नारायण अपने। मान ओरथ पूरा राम राजे। ढाठी पीत परम की, भेटत गुर सूड़ा राम राजे। पूर्ण गुर पाए पुरब लिखाए, सबन दीन दयाला। आद मद अंत प्रसोई,

दर्शन कौ बलेगारी गुरसो प्रसन्ने मिलना विशुन्ने तन देंदी साच स्नेहा कौ नानक संत अनंत ठाकुर के हरसों की जे नेहा मन ऐसा नेहो करेहो चकवी सूर स्नेहो चित्त।

विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहे ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेसे तायो आपोड़ तारी प्रमुरारी सर्व सुखरन आयो रखन हारे प्रप्यारे मुझते कशु न होआ होना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीक उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बसद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकि शरण गही निरप पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया गए कंठ लाया गुरमिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कशु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साध अंचल गहरे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोध साधु हर जय जय नानक नाम त्याए पूर्ण सा संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लय जलसल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमानिया आद अंते मसोई गुरप्रसाद दी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान कराव रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कलमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मल होड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुर समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शांत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी।

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमानी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

प्रेम नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे कण बूंद बचित्र मन आस हे अल पीवत बिनसत ताप तापा बिनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत कहना सुंदर चतर सुजान स्वामी।

आप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे, मिल चाओ चाई ले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे, मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे, जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया, हर कंठ लागे दिस भागे, मिलना सेज सुहंतिया, प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान, बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड है विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद वियोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिवत विस्माद सालाहा विस्माद उजड़ विस्माद रहा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकाश।

आईए ओ रहे ना परिये पाईए। श्लोक महला पहला मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार। हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार। तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगरवास भयकार। योगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार। सतिया मन संतोष उपजय।

जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी, पढ़िया होवे गुनहगार ता ओमी साधना मारिए, जेहा काले कालना ते वेहो ना उपचारिए।

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, चौके ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्त अंदर सब को वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी

करना कियो कल आपे ही ते तारिये देखे कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनो वसारी है आपन हथी अपना आपे ही का सवारी है। श्लोक महला दूजा एक ने ही आस की दूजे लगे जाए नानक आस कंडी है।

पढ़त गुणत ऐसे सब मारे, किन्हू खबर न जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदोगा पाई। जौरे खुदाए मुए तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संतो, पै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नैनी।

साखी शब्द सुरत नहीं उबजे, खेंच ते सब लीना, श्रवण विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननक सह बस, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या

राम राम राम रमे रम रही है, साग स्यो पूल नहीं कहिए रघाओ, कौआ कांक पूर चिराए, कह बिशियर को दूध पियाए, सत संगत मिल बबेक बुद होई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत स्वान

कियो सिंगार मिलन के ताई, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पेर हर की भौरिया, हरा बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ, तन पे

अस देखियो जग में रासमाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आशा मेरी।

अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे, नाही राम एआना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा रहाओ। जल के मजन जे गत होवे,

प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारिया ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बेबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई अरहाओ जननी केरे उदर उदकम पिंड किया दस द्वारा दे आहार अग्नमय रख ऐसा खसम हमारा कुम्मी जल माहे तांतिस बाहर पंख कीर्तिन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा सेज फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सत्या जिन मन होर मुख होर।

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुरप्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो हरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़।

फिर दे जिनके कपट बस बाहरों संत कहाहे तिसना मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की होम में कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए तर्म राय ते देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचो होमे मारे ता हर पेटे सोई गुजरी महला तीजा ते जन सांत सदा मत निचल जिसका अवमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चितलाए हर चेत अचेत मना जो इच्छे सो फल होई गुर प्रसादी हरस पावे पीवत रह सदा सुख होई अरहाव ता गुर भेटे ता पारस होवे पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीख्या देवे साच बुझाए विण पार से पूज न होवई विण मन परते अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा केसो मार्ग पाए नानक विण नदरी किशु ना पाईए जिस अंदर करे सो पाए गुर प्रसादी देव डेआई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पद ना कासी मत उपजे ना कासी मत जाए सदगुर मिले मत उपजे ता ए सोजी पाए हर कथा तू सुन रे मान शब्द मन वसाए ए मत तेरी थिर रहे ता परम विच्चों जाए अरहाओ हर चरण रे वसाए तू किलबिख होवे नास पंच पू आत्मा वस करे ता तीर्थ करे निवास मनमुख ओ मन मुग्ध है सोजी किशु न पाए हर का नाम न बुझई अंत गया पछताए इहो मन कासी सब तीर्थ सिमरत सदगुर दिया बुझाए हर सर तीर्थ ते संग रह जिन हर हृदय रहा सुमाए नानक सदगुर मिले हुक्म बुझया एक वस्या मन आए जो तु पावे सब सच है सच्चे रहे समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे पाए जेता पड़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर सब

निरसंगत गुण परगास जिन हर हर हरस नाम न पाया ते पाघीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखया लिखास। तन तन सतसंगत जित हरस पाया मिल नानक नाम परगास। गूजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम। मिल सतसंगत शब्द मन मोह है जब गोविंद गोविंद त्याई है। सबको दान दे प्रभ ओ है मेरे पाई जना मुको। गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा। मिल गुर साध संगत जन सो है रहाओ। सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है। जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नामे सो है। दुर्मत पाघीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोह है। कौआ काग को अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है। अमृत सर सतगुर सतवादी जित नाते कौआ हंस हो है। नानक तन तन वड्डे वडभागी जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है। गुजरी महला चौथा हर जन ऊतम ऊतम बाणी मुख बोले पर उपकारे। जो जन सुने श्रद्धा भगत सेती

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बगस मिलावे एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा कर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौसन बंद।

सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवां।

सागल सिट को तनी कहीजे, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव ब्रंज अर सगल मोन जान। गहे ना सकाहे गता, प्रभ की आगम अगाध कथा। सुनिए अवर अवर विद बुझिए।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल अरहाव मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रोसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कबहू जाई हराओ करत करत अनकबो पाती।

आओ साध संग उधार एहो मन आढ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया।

मेरे साध बचन गोविंद ते आए, महान निर्मल रीत रहाओ, जाप ताप अनेक करणी, सबल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे, पय पूर्ण काम, सास सास ना बिसर कब हूँ, ब्रह्म प्रभु सुमरथ, गुण अनकृष्णा क्या बखाने, अगंत सदा अकथ, दीन दर्द निवार तारण, दयाल कृपा करण, अटल पदवी नाम सिमरण, दृढ़ नानक हर हर शरण, गुजरी मोहल्ला पंजवा, अहं बुद्ध बहु सघन माया, महादीर्घ रोग, हर नाम औखद गुरु नाम।

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लेव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुर्मत बुद्ध ते आगी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधरे

परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझ की स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसै,

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रत्या

क्रोध लोभ छोड़िए दीजे अग्न जलाए जीव दया नित जापिए नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सब बलिहार महला पंजवा खांदियां खांदियां मोह कठा पए नंदियां सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन

आमन जान रहे जन्म न तहा मर। साहेब सेवक एक एक दृष्टाया, गुर प्रसाद नानक सच समाया। शुद्ध राग गुजरी भगतां की बाणी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कबीर जीओ का चौपदा। कर दूजा चार पाव दो सिंह गुंग मुख, तब कैसे गुण गई है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बेराने होई है, फाटे नाकन टूटे कदन। कोदो को पुस गई है रखाओ, सारो दिन डोलत बन मैया। अजो ना पेट अगई है, जन भगतन को कहो न मानो। कियो अपनो पई है, दो सुख करत महाप्रभुडो। अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभिसरयो। यो अवसर कद पई है, प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो। गात बिन

अंतकाल जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता में जे मर बेसवा जोन वल वल अवतर अंतकाल जो लड़के सिमर ऐसी चिंता में जे मर सूकर जोन वल वल अवतर अंतकाल जो मंदिर सिमर ऐसी चिंता में जे मर प्रेत जोन वल वल अवतर अंतकाल नारायण सिमर।

देत जप नर सगल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सबटं भव भूत सर्वगतं एक ओंकार

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर किसमें रहा समाए राम, सर्वे सुमाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटिया अंधेरा दुख नाठा आम्यों हर हस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया हर पायड़ा कर आए। अराग बिहागड़ा महला पंजवां,

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवे मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवे महल पावे मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम वखाणा राम। अमृत बाणी उच्चरा हर जस,

पाइए हर जियो गुण गावे हर नीता राम। तूर भगतन की मन तन लागो हर जियो सपत पुनीता राम। पतता पुनीता होए तिन संग जिन विधाता पाया। नाम राते जी दाते नित दे चढ़े सवाया। रिद सिद्ध नव निध हर जप जिन्नी आत्म जीता। बिनवंत नानक वडभाग पाईए साध साजन मीता। जिन्नी सच वणजिया हर जियो

गुण संपूर्ण प्रम पीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा पुत्र कलतर ना संग शोभा हस्त कोर विकारी बिनवंत नानक बिन सा संगम सब मिथया संसारी। अराजन क्यों सोया तू नींद परे

आपे सुगड़ स्वरूप से आनी, अपना चोज कर वेखे आपे, आपे सबना जिया काहे जानी। श्लोक महला तीजा। एहा संध्या प्रवान है, जित हर प्रम मेरा चित आवे, हरसो प्रीत उपजे, माया मोह जलावे। गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके, मर जम्मे हुए खुवार। महला तीजा। प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास न जाए, नानक सब गुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आ ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बगसे करे दया, आपे पुल न पुल्ले कभी, सब सच तपापस सच थया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरे साध संग, तैतन उड्डे खेहे, जिन कीती तिसे ना जानई, नानक फिट अलूनी देह। महला पंजवा। खड़ बसते चरणार बिंद, रसना जपे गोपाल, नानक सो प्रासिमरी।

जग मोह मर के ना जाने कोए, ऐसी मरनी जो मरे बौर ना मरना होए। महल्ला तीजा, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहेब मनोना विसर ता सैला मरना होए, मरने ते जगत डरे जीव्या लोड़े सब कोए। गुर प्रसादी जीवित मरे हुक्मे बूझे सोए, नानक ऐसी मरनी जो मरे तां सा जीवन होए। पौड़ी जा आप किरपाल होवे हर स्वामी, ता अपना नाओ हर आप जपावे। आपे सतगुर मेल सुख देवे, अपना सेवक आप घर पावे। अपने सेवकां की आप पैज रखे, अपने भगतां की पैरी पावे। तर मराए हाय हर का किया, हर जन सेवक नेड़ न आवे।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, एन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुनहर। उथे वेद पुराण ना साहता, आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए, आप सब दूगी बाहर। अपनी मित आप जान।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूज मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहां तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सबको वस पेखी जोग ना होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सुखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हार संतारे नार, होर दा तार ना सु

निर्मल नाम से मन आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुवार, नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़ांस महला तीजा, हौमे नावे नार विरोध है, दोइना वसे इकठाए, हौमे जो सेवा ना

नित पखा फेरी सेव कमावा, इस आगे पानी टोवा। नितन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे, मेरा स्वामी

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

आओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृढ़ सुजानी सचगुम तुम्हारा तत् निवासी आए ना जावे मेरा प्रभु विनासी तुम मेहरबान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना वढ़ंस मोहल्ला पंजवा तू बेअंत को विरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाने सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रोचा।

एत उद देखो ओड़ तुम्हारी मोए निर्गुण गुण किसू न जाता। नानक साधु देख मन राता वढ़ांस महला पंजवा।

मन निर्मल कोई संता तूरे चरण कमल हिरदे उर तारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारे कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पाव वढ़ंस मगल्ला पंजवा साध संघर अमृत पीजे ना जू मरे न कबहू चीजे वड़भागी गुर पूरा पाईए गुर कृपा ते प्रभु त्याई ऐ रखाओ रतन जवाहर हर मान कलाला सेमर सेमर पा पय निहाला जत कद पेखो साधु सरना हर गुण गाए निर्मल मन करना घड़ घड़ अंतर मेरा स्वामी उठा नानक नाम पाया प्रतूठा वढ़ंस महला पंजवा।

हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ हम नीच से उत्तम पय हर की शरणाई पाथर डुबदा काट लिया साची वड़ियाई बिग से अमृत पय गुरमत बुद्ध पाई अको परमल पय अंतरवासना वसाई मानस जन्म दुलंब है जग में खटिया आए पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम ते आए मनमुख पूले दिख लगे अहला जन्म गवाया हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द ना पाया मुखु हर हर सबको करे विरले हिरदे वसाया नानक जिनके हिरदे वसया मोख मुक्त ते पाया वढ़ांस महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है जब साज अंदर होए सच ताम साचा पाई है लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है जिथे जाए बही है भला कही है

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तै फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर

गुण संग्रह अवगुण विकण आपे आप छाण गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजै नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजै गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम। गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहया सुमाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरेया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेवने अपना अंतर शब्द अपारा।

मन माया मोह वे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द समाने सच रते अदकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जनवड भागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिख लागी अपना आप पछाणिया मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुरु अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिस आप बुझाए ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार आराम कूड़ बोल बिकामणी बहु वधे विकारा राम बहु वधे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा खोटे खरे

तेत पै दे पग खिस तेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रभ सच पछाणिया होर फूली अवगण यारे मैं सदा रावे पेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

से उबरे सटे सिउं लिवलाए पौड़ी तित जाए बहो सत संगति जिथे हर का हर नाम बलोइए सहजे ही हर नाम लिहो हर तत् न खोइए नित जप्यो हर हर दिन सुरात हर दरगह टोइए सो पाए पूरा सदगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लिखोइए।

कारण कारण समर्थ है सह सृजनहारे। जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे। हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत न आईया सब दन लागो पाओ ओस नु सुख न उबजे भावे सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे सिउं लिव लाओ महला तीजा ए मन ऐसा सतगुर खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए सहसा मूल न हो गई होमे शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए अंतर सांत मन सुख होए ससंजम कार कुमाए नानक पूरे कर्म सतगुर मिले हर जीव कृपा करे रजाए पौड़ी।

प्रसन्न कोई न किसी जेहा अंडज जेरज उत्कुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महेरवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

मन रे समझ कम मत लागा, नाम सार अनस लूप हाने, हे पछताई अपागा रखाओ। आबत को हरख जात को रोवे, ए दूसुख ना लेन लागा, आपे दूसुख भोग पुगावे, गुरमुख सु अनरागा। हरस ऊपर अवर क्या कहिए, जिन पिया सो तृप्तागा, माया मोहित जिन इवरस खोया।

प्यार राखो पैज हमारी रखाओ। शब्द सलाई सदा हो जीवा गुरमती पौ भागा, मेरा प्रसाचा अत सवाल्यो गुरसे व्याचित लागा। साचा शब्द सची सज बाणी दो जन अनजन जागा, महा गंभीर सदा सुखदाता इसका अंत न पाया। पूरे गुर की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया, मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों परम चुकाया।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सु वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रे तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधव पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक कौ पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो काटायो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांछित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर कै मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम पागा कौ नानक ताके पूर करम्मा जाका गुरचरनी मन लागा सोरठ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याई है सिमरहो हर हर नाम परानी बिरसे काची दे अज्ञानी हरहाओ मृत्युना अर स्वप्न मनोरथ ताकि कछ ना वडाई आराम भजन बिन काम न आवस संग न काहू जाई हो करत बिखाए अवरदा जी को काम न कीना धावत धावत न त्रिवतासिया आराम नाम नहीं चीना साध विकार विखे रस मातो असंख खते कर फेरे नानक की प्रापाए बेनंती काटो अवगुण मेरे सोरठ महला पंजवा गुण गावो पूर्ण अवनाशी काम क्रोध बिख जारे महाबिघम अगन को सागर साधु संग उधारे।

कर लीना। मनव से अविनाशी ताको बिघन न को लागे, जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवां माया मोह मगन अंधियार है देव।

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो नै पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब टूंडन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याए नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुरपूरे सद कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आनंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर स्नाना रहाओ साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिरसा पातशाह उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराजित लाथे मिल साह संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा नांग पा मेरे साथे जन्म मरण फैलाथे तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंध मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किल विखनासे हर चरणी चित लाए उस करो सदा प्रव्यापने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पए पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन मिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पए सब पावन जन नानक सो कर आया सोरठ महला पंजवा साहेब गुनी गहेरा कर लस्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पए दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा भौ कते नहीं प्रसरणा रहाओ तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल कन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन साह संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया खुदल खेम सावतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रघाओ हर चरण की ओर सतानी सचू की कान लुकानी।

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रहिया उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुम्हारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पनवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मेले हर गुण गावो सदा सुपाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देव पुरख विधाता हर दिन ही जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुरमत खोए पदत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद नित गाईये सा संग मिल त्याईये मार बांशित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैने फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रो मायो ए पुसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर पर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो।

गौरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया कहो नानक सर्व

संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल किरपाल किरपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भगत सिर पाओ जीव जने अपने, प्रताप न

अवर सगल मिथिया ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस दे लही। नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं। सोरठ महला नावा मान रे कौन कुमा तैलीनी। पर दारा निंदिया रस रचियो।

कौन कर्म विद्या को कैसी, कर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमरै, हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध, जाहे जपे गद पावे, और धर्मता के सवनाहन, हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी, या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर, नानक दर्पण न्याय, सोरठ महल्ला नाम, माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर, मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो, न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निस्बासर, न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना, न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण, अराख लिहो सरनाई, सोरठ महल्ला नाम, माई मन मेरू बस नागे, निस्बासर विखेन को तावत, के बदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन, निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरच्यो, बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो, तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन, ताको मर मना जाना, जब गी शरण साध की आयो, दुर्म सगल बिनासी, तब नानक चेत्यो चिंता मान, ताटी जम की वासी, सोरठ महल्ला नामा, रे नर, ए साची जी तार, सगल जगत है जैसे सुबना, बिन सद लगत न बार रखाओ, बारू पीत बनाई राजपत, रहत नही दिन चार, तैसे ही ए सुख माया के, उर्जो खां गवार, अजहू समझ, कछ बिगड़ो नाहिन, ताज ले नाम मुरार, कहो नानक रिज मत साधन कहो, वाख्यो तोय पुकार, सोरठ महल्ला नामा, ए जग मीत ना देखियो कोई, सागर जगत अपने सुख लागे हो, दुख में संग न होई रहा, दारा मीत पूसन बंदी, फगरे तन स्यों लागे, जल ही निरतन देखियो नरको, संग शाड़ सा भागे, कहो का या मन भौरे कहो, इनसे उन्हों लगायो, दीना नाथ सगल पै पंजन, जसता को बिसरायो, स्वान पूजो पयो न सुध, बहु जतन मैं कीनो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो, सोरठ महल्ला नामा, मान रे गयो न गुर उपदेश, हां पयो जो मूड मुंडायो।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन का नाम सेख रहाओ विख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान समोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंज गे पाई ही मैला तन होए ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूज गे पाई क्या मांगो क्या देह पहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेह गुर बिन अलख न रखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदक सके लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। तय कबीर रंग राता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम

रहाओ, छिन छिन तन शीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावे, कहे त कबीर कोई नी तेरा, हिरदे राम की ना जपे सवेरा। संतो मन पवने सुख बनया, केशे जोग प्राप्त गनया रहाओ, गुरद खिलाई मोरी, जित मिर्ग पड़त है चोरी, मूंद लिगे दरवाजे, बाजी अले अनहद बाजे, कुंभ कमल जल परया, जल मिटिया उबा करया, कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मन मानिया, राग सोरठ

आवै हो, ऐसो बेडी बन ना साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस जाखिया, पूछे कैन ना जाई हो, बेडी के गुण सुन रीबाई।

अणमड़िया मंदल बाजे में सामन कन हर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मिले राम स्नेही जे मिले दे सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन ना मैं तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिखारी अशतराज विशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया आनक कटक जैसे पूर परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कट भुगवै सोई कहे रविदास हाथ पैने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रे बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकड़ फांक्यो अर काट्यो रांध कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तऊ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास भगत एक बाडी अब हे कासो कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलभ जन्म पुन फल

राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहा। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। तैयत आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ, राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, आराम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई, लोग ठावे पन ही अरहाओ, आर नहीं जे तोपो, नहीं रामबी ठाओ रूपो, लोग गंठ गंठ खराबे गुचा, हो वेर गंठे जाए पहुचा, रविदास जपे राम नामा, मोहे जमसु नाही कामा, राग सोरठ बाणी भगत भीखन की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, नैनो नीर बहे तन कीना, पहे किस दुदवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उच्चरे।

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एक कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइये, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चितन किया, कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया, ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक, किस सुनिए किस कहिए। पाल रहे हम रहन न पाया, जीव ते हम मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला, कर दूजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए, तप हे आओ जीड़ा बिल लाए। फिर जसवारे साचा सोए, तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुकम न पाया जाए, क्यों कर साच मिलो मेरी माए। रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए, ना को चाखे ना को खाए। लोग बतीने ना पत होए, ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए, तुद बिन दूजी ना ही जाए। जे को करे कीते क्या होए, जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल, क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल। जैसी नदर करे तैसा होए, बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा, नदर करे ता सिमरिया जाए। आत्मा द्रवे रहे लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे। अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए। हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए। रहाओ सच सिमरे होवे परगास, ताते बिखिया महे उदास। गुर की ऐसी वड्याई, पुत्र कलत्र विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे, जिसका जीव तस आगे तरे। साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए, जो इच्छा सोई फल पाए। साचा साहिब कृपा करे,